याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाद्य अनन्तो दिव्येनि मोक्षं पन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

0: खाती हला हेतली आनी हम आला थले बने ई खाती हाले हम आला थले आले खाती आला हे के थिया मेना बाहने हेतले वेले लो असुते बड़ा खड़ावा निबा हे मेने ले थे खाती लाले सोए नवतल दिन असुते बल येशु स्वास के नाम में फले आओ
1: देखे नमा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के थिया ले हम आ तेरे
1: बे दे दे नवा खाती Hallelujah.
0: Itelia mala mati hana hele keti liha mele amatilia le. Obra sudi beva swamin bhans. Obhans udau karan nekine kenata.

0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश कुतु सेक, स्वामी वंश उतानु सेक, स्वामी वंश नवत वडिन सेक।
0: एहिन प्यानी उन्वांसगे मरणय तुत्तान्य सीपत कर्मिन जीवनदायक फूप्यात गैलवीम दायक कुशलाना तपय बट पुद करम ओबाहम सिटमिन ओबट सेवे खरानट अप सुदुसान वचिन सल की मगन अपय बट तुति पुदमो क्रिस्तुन महंसगे श्री सर रेटा श्री रुधि रेटा सहभागिवन अप सम शुद्धात्मन विशेन सत्कर्णु लबनलेस अपि अवनतवा आयद सिटिमु स्वामिनी मुल्लु वेई पेतर पवत्ना ओबगे सुदु सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम सभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत्त ऐतुव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयनुकम पावकरे विश्वासे तबमि नेसुवन कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयनुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन्हि उबगे कमत्ते इटुकल सिलु शुद्धवंतेइंद समग अपिदु सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुस्सन कल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत सा किरीमटद उबगे महिमे वर्णा किरीमटद उबगे पुत्र येसुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुनु मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से करेद सियलु बलते देवी पियानने शुद्धात्मनन हा समगे क्वडवासन्ना वू ओब वहन्सेट सकल गौरवयत महिमे

याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षां पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहांसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन।